दिल का हाल सुने दिल वाला फ्रॉम मूवी श्री 420. द नेक्स्ट सॉन्ग ऑल्सो अगेन फ्रॉम श्री 420 1955 मूवी मन्नाडे लता मंगेशकर ड्यूएट शंकर जयकिशन म्यूजिक शैलेंद्र अरुद लिरिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स. प्यार हुआ इकरार हुआ फिर प्यार से प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल. राग इज भैरवी ताल इज कहरवा. दिस पिक्चर नरगिस दत्त हु कम्स टू विजिट राज कपूर एट हिज प्लेस ऑफ वर्क विच इज लॉन्ड्री मैट वेर ही इज हायर्ड एज आयरनिंग क्लोज एंड स्टफ लाइक दैट. जय भारत लॉन्ड्री इज द नेम ऑफ द प्लेस. दे टेक ए ब्रेक फॉर अ कप ऑफ टी एंड देन दिस रोमांटिक सॉन्ग स्टार्ट्स पिक्चराइज्ड ऑन देम. दे एक्नॉलेज देयर लव फॉर ईच अदर अंडर एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग ए रेजिंग टिपिकल फॉर मुंबई टिपिकल फॉर बॉम्बे रेजिंग rainstorm. The three children shown during the song are Raj Kapoor's children, Randhir Kapoor, Ritu Kapoor and Rishi Kapoor. Fourth song in the movie, Pyar Hua Ikrar Hua. Hear the song.